स्वर गोपाल मिश्रा का था। अब सुनते हैं चंदू आत्मा और सहकारियों के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना।

चंदो आत्मा और सहकारियों के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना।

वाणी जयराम के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राग गुरजोड़ी तोड़ी पर ख्याल. कलाकार हैं प्रबीर बंदोपाध्याय. आपके साथ तबले पर हैं जॉयदास गुप्ता और हारमोनियम पर हैं अमिताभ भट्टाचार्य.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Gujari Todi. Our artist is Prabir Bandyopadhyay. Accompanying him on the tabla is Joydas Gupta and on the harmonium is Amitabh Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुरजोड़ी तोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे प्रबीर बंदोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राग झप ताल पर तबला वादन। कलाकार हैं उज्ज्वल रॉय। आपके साथ हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग गुरजोड़ी तोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज प्रबीर बंदोपाध्याय। This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Jhap Taal. Our artist is Ujjwal Roy. Accompanying him on the harmonium is Devashish Adhikari.

0: अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत झपताल पर तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे उज्ज्वल राय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Jhaptal. Our artist was Ujjwal Roy. Accompanying him on the harmonium was Debashish Odhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है मिश्रवाद्य संगीत। मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं वायलिन वादन से। कलाकार है उस्ताद फैयाज हुसैन। आपने अपने कार्यक्रम का आरंभ किया है राग अभोगी से।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन वादन राग था अभोगी। आइए अब सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन की वायलिन पर बजाई हुई पिलो धुन।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे उस्ताद फैयाज हुसैन के वायलिन पर बजाई हुई पिलो धुन। श्रोताओं, मिश्र वाद्य संगीत के इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं जलतरंग वादन। कलाकार है मिलिंद तुरानकर। आपने प्रस्तुत किया है राग मालकम।

श्रोताओं हम सुन रहे थे जलद रंग वादन, राग था मालकंस और कलाकार थे मिलिंद तोरणकर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद है. तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital by Sunira Kasliwal. She is accompanied on the tabla by Haseen Ahmad Khan. You will first listen to Rag Nat Bhairav, in which you will hear Alap, Jod and Jhala, followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव, सुनीरा कासलीवाल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग, in which you will hear the alap followed by vilambit and drutgat set to teen tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विथ राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Papa,

हाजरीन, मैंडोलिन पर एक और अनोखा काम पेश करने से पहले उसके बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक सबसे अलग और अनहोनी बात की टू स्ट्रिंग यानी मैंडोलिन की खूंटी को घुमाकर राग अदा करना, जिसमें आप वीणा का टोन महसूस करेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैंडोलिन पर इस तरीके से बजाने के ईजाद करदा यानी इन्वेंटर ऑफ दिस स्टाइल मेरे वालिद और उस्ताद मैंडोलिन विज़र्ड जनाब सज्जाद हुसैन साहब, जो पहले शख्स हुए हैं जो ख़ुद अपनी मिसाल आप हैं। शुक्रिया।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम DTH पर 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विदुषी किशोरी आमोणकर के गायन से। आपने प्रस्तुत किया है राग बसंत बहार। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है बरजो ना मान। द्रुता ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और बोल है मान रे पिया मोरी बिनती। आपके साथ तबले पर है गोपाल वाड़ेगांवकर, हारमोनियम पर है बबनराव आठले। सुनते हैं राग बसंत बहार, कलाकार विदुषी किशोरी आमोणकर।

0: श्रोताओं, हम सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोणकर का गाया हुआ राग बसंत बहार। आपके साथ तबले पर थे गोपाल वाडेगांवकर और हारमोनियम पर थे बबन राव आठले।
1: कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोणकर का गाया हुआ राग बहादुरी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है ए महादेव पार्वती पति। तबले पर साथ कर रहे गोपाल वाडेगांवकर, हारमोनियम पर बबन राव आठले। आइए सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोणकर का गाया हुआ राग बहादुरी तोड़ी।

अभी अपने विदुषी किशोर यामोनकर का गाया हुआ राग बहादुरी तोड़ी सुना। तबले पर साथ की थी गोपाल वाड़ेगांवकर ने, हारमोनियम पर बबन राव अटले। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग दरबारी कनाड़ा और राग चारुकेशी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति. तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. पंडित संदीपन समाजपति अपने गायन का आरंभ राग दरबारी कनाड़ा में ख्याल से कर रहे हैं. तो आइए सुनते हैं राग दरबारी कनाड़ा में ख्याल गायन. कलाकार पंडित संदीपन समाजपति.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग we present a Hindustani vocal recital. Listen to a khayal in Raag Darbari Kanara followed by Raag Charukeshi. Our artist this evening, Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying on the tabla, Pandit Sujit Saha, and on the harmonium, Rathindranath Chakravarti. Now, listen to a khayal in Raag Darbari Kanara followed by Raag Charukeshi by our artist, Pandit Sandipan Samajpati.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग दरबारी कानाड़ा में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। पंडित संदीपन समाजपति अपने ख्याल गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग चारुकेशी में ख्याल। तो आइए सुनते हैं राग चारुकेशी में ख्याल गायन, कलाकार पंडित संदीपन समाजपति।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग चारुकेशी में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग दरबारी का नारा एंड राग चारुकेशी बाय आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग पंडित संदीपन समाजपति, एकम्पानिंग ऑन द तबला पंडित सुजीत साहा एंड ऑन द हारमोनियम रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं उस्ताद मशकूर अली खां. राग है विभास. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बंदिश के बोल हैं अरे पल झप गई. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं भोर भई जग आए. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर नजर हुसैन. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1990 में की गई थी. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani khayal recital by Ustad Mashkoor Ali Khan. The rendition commences with the rag Vibhas. The accompaniment has been provided by Ismail Daddu Khan on the tabla and Nazar Hussain on the sarangi. This was recorded in the year 1990.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं उस्ताद मशकूर अली खान। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय उस्ताद मशकूर अली खान। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग मालकौंस। विलंबित ख्याल झूमरा ताल में निबद्ध है, बोल हैं कृष्ण माधव राम। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं मूरख मन मेरे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग मालकौंस।

कहता सगा मदानी दागा मगा गदा दानी नी दादा मामा गगा दानी दा दादानी गगा सगा मदानी मामा दानी दानी दागा गदानी नी दा मदा दा दानी नी दा मदानी गगा गदानी दानी दागा मदानी दा ने ने दादा मामा मगा गगा दादा दानी दागा मदा गगा मदानी दानी मदा मदानी गगा मदानी दानी दानी गगा मदानी दा थागा मदा दागा दागा मदानी दानी मदानी गगा मदानी दानी दानी दागा नी दागा दानी दागा गगा गनी दागा दानी मदानी गगा मदानी दा madada madani gamadan tadaga daga madani dani dani madani gaga magadani dani daga madaga madani da dani gamaga daga madani gaga madani dani dani daga magani daga magadani gaga madani daga

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे उस्ताद मशकूर अली खां, संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल द...

दुखां, सारंगी पर नजर हुसैन और हारमोनियम पर वहीद उस्मानी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय उस्ताद मशकूर अली खान। द एकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल द दोखा ऑन द तबला, नजर हुसैन ऑन द सारंगी एंड वहीद उस्मानी ऑन द हारमोनियम। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

சனி சனி சனி பனி சனி பனி சீதி விநாயகம் மாரி பாமானி பதா.

राजा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का बांसुरी वादन. सर्वप्रथम आप सुनेंगे इन्हीं की बजाय बांसुरी पर राग गुर्जरी तोड़ी में धुन. मध्य लय रूपक तथा द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित रविनाथ मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई राग गुर्जरी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। आइए सुनते हैं उन्हीं का बांसुरी पर बजाया राग मेघ।

अभी आप सुन रहे थे पंढरी मोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाया राग मेघ। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव अपने कार्यक्रम का समापन बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी से कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा बांसुरी पर बजाई बनारसी कजरी। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित रविनाथ मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर अनवरत भारतीय शास्त्रीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. लीजिए अब सुनिए निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन में आलाप. विलंबित और द्रुतगत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सितार रिसाइटल बाय श्री निशेंद्र किंजल्क. ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चटर्जी. श्री निशेंद्र किंजल्क फर्स्ट प्रेजेंट्स राग यमन इन विच यू विल हियर द आलाप followed by vilambit and drutgat, both are set to teen tal.

0: अभी आप निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन सुन रहे थे। तबले पर संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। और लीजिए अब सुनिए राग जय जयवंती, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने।
1: दैट वॉज राग यमन, श्री निशेंद्र किंजल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग जय जयवंती, इन विच यू विल हियर द विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप निशिंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग जय जयवंती सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू जस्ट हर्ड राग जय जयवंती। श्री निशिंद्र किंजल कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद अ धुन।

0: अभी आप सितार पर ये धुन सुन रहे थे। तबले पर संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट धुन वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय निशिंद्र किंजल। ही वाज अकंपनीड तबला बाय श्री प्रसून चटर्जी। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

पर ट्यून किया है भारतीय संगीत का रागम डीटीएच चैनल। हर दिन हर पल भारतीय संगीत। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है। स्वर है मलय बनर्जी का, बोल है विनती सुनो मेरी।

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए अब सुनिए उषा मंगेशकर के स्वर में संत रैदास की रचना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

संजीवनी बहलांडे के स्वर में आइए अब सुना जाए संत मीराबाई की ये रचना, तुम मेरी राखो लाज हरी।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। सविता बनर्जी की आवाज में आइए सुनते हैं गुरु नानक की रचना, बोल है एक सहारा है तुम्हारा।

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए सुनिए शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की ये रचना, बोल जब ते श्याम।